0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस अपने प्रथम अध्याय को मानवीय सम्मान हेतु समर्पित करते हुए इस बात पर बल देता है कि यह उन मूल्यों और निधियों की आधारशिला है जिन्हें आज सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे मानव हृदय की भ्रष्टता से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियों से अपने को दूर करने के क्रम में दिव्य उत्पत्ति से अपने संबंध को ना खोएं। वह यात्रा जिसके द्वारा मूलभूत विशेषताएं और मानवीय सम्मान के अधिकारों को प्रकाशित किया गया है, निश्चित रूप में मानव इतिहास के अति महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को प्रस्तुत करता है। यद्यपि इसका मार्ग आगे अपनी पूर्णता को प्राप्त करने से है और उसे चाहिए कि वह विरोधाभावों को घोषित करे, नए और पुराने दोनों को, जो पूर्णता के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि कलीसिया स्पष्ट रूप में अपना सहयोग देती है, यह याद दिलाते हुए कि मानवीय सम्मान की उपस्थिति व्यक्ति की गरिमा से होती है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने भी फिलहाल के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर जोर दिया है। ईश्वर की योजना और इच्छा यह है कि हम मानव उनके संग, दूसरों के संग और सृष्टि के संग एकता में प्रवेश करें। मानवीय सम्मान व्यक्ति की योग्यताओं, धन या जीवन के ओहदे पर निर्भर नहीं करता है और ना ही सही या गलत चुनाव में ही, बल्कि यह एक उपहार है जो हर व्यक्ति को आगे और अपने से परे ले चलता है, जिसे ईश्वर ने अपने शर्तहीन प्रेम के रूप में प्रदान किया है। मानव जीवन का अनंत सम्मान इस भांति ईश्वर के रूप में बनाए गए एक प्राणी स्वरूप अपनी पहचान में निहित है, जहां वह अपने सृष्टिकर्ता को जानने और उसे प्रेम करने की योग्यता रखता है। एक योजना और प्रेम का उपहार जो उसे श्रेष्ठ अन्य प्राणियों से परे ले चलता है, जो उसकी देख रेख में सौंपी गई है, उन पर अधिकार करो और उनका उपयोग ईश्वर की महिमा हेतु करो। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वास में हम मानवीय सम्मान के मूलभूत तथ्य को समझ सकते हैं, क्योंकि पुत्र पिता के रहस्य और उनके प्रेम के प्रकटीकरण में मानव के संग मानव को पूर्ण रूपेण प्रकट करती और उसकी सर्वोच्च बुलाहट को स्पष्ट करते हैं। हम व्यक्ति में सदैव संबंध, एकता और प्रतिभागिता को पाते हैं जो ईश्वर और दूसरों के संग जुड़ा हुआ है। अतः यह ईश्वर पिता के संग, पुत्रवत और यीशु ख्रीस्त तथा सारी मानवता के संग एक भ्रातृत्वपूर्ण संबंध है। यह हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग करता है।
2: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere.
1: एक व्यक्ति होने की अनुभूति का अर्थ अपने को एक उपहार स्वरूप दूसरों को देना है, स्वीकार्य के मनोभाव में। इस तरह यह आदान प्रदान और सेवा में विकसित होना और प्रौढ़ता को प्राप्त करना है। संत पापा लियो ने कहा कि यह उत्तरदायित्व हर एक को सौंपा गया है। वहीं यह हमसे एकता और आपसी देखरेख की मांग करती है, जिसके द्वारा हम कई असत्यों और तोल मोलों पर विजयी होते हैं, जो आज भी इसके संबंध में हमारी समझ को विकृत करती और इसके कार्यान्वयन में बाधक बनती है। वास्तव में इतिहास में लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो इस सम्मान के विरुद्ध गए, यहाँ तक कि आज भी मनुष्य अंदर से अपने में विभाजित है और मानव का सारा जीवन, चाहे वह व्यक्तिगत या सामुदायिक क्यों ना हो, अपने को अच्छाई और बुराई तथा ज्योति और अंधकार के मध्य संघर्ष करता पाता है। यह क्षणभंगुर और सीमित स्थिति यद्यपि अपने में आशा से देखी जा सकती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं मानव को मुक्ति और शक्ति प्रदान करने आए, उसे अंदर से नवीन करने और इस दुनिया के राजा को हराने हेतु जो उसे पापों में बंधक बनाए रखता है। इससे भी बढ़कर धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस इस बात को सुदृढ़ करता है कि मानवीय सम्मान का तात्पर्य पूरे व्यक्ति से है, और इसलिए हमें दोहरे नजरिए से आगे जाने की जरूरत है। यद्यपि मानव शरीर और आत्मा है, वह अपने में एक है। शरीर को एक वस्तु तक सीमित करना, उसके संग स्वच्छंदता से पेश आना हमेशा व्यक्ति की गरिमा का अपमान करना है। शरीर से घृणा करना मानव के लिए अस्वीकार्य है, और उससे इस बात की मांग की जाती है कि वह उसकी देखरेख अच्छी तरह और आदर से करे, क्योंकि ईश्वर ने उसका निर्माण किया है और वे उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करेंगे। वहीं हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह हृदय के बुरे रुझानों का गुलाम ना हो, क्योंकि हम सभी पाप से अपने को घायल पाते हैं। अंततः संत पापा लियो ने कहा कि मानवीय सम्मान के संबंध में गौडियम एट स्पेस तीन अति महत्वपूर्ण बातों की याद दिलाती है। बुद्धिमता, जो मानव को सच्चाई की खोज से संबंधित असंतोष में जिज्ञासु बनाती है। अंतःकरण, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को एकता और अर्थ प्रदान करता है। और स्वतंत्रता, जिसके द्वारा वह अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। इन आयामों को हम एक दूसरे के संग निकटता से संयुक्त पाते हैं। यह अंतःकरण है जहां सच्चाई की पहचान होती है जैसे कि वह है, और स्वतंत्रता उसे मौलिकता और संभावना के रूप में अनुभव करती है। पवित्र आत्मा, जो ख्रिस्त में जीवन प्रदान करते हैं, हमें स्वतंत्र करते और ईश्वरीय संतान स्वरूप निरंतर हमारे सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। वे हमें भय से बचाते और अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, जहां हम जीवन की परिपूर्णता को मृत्यु से परे पाते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा ख्रिस्त ने हमारे लिए की है।
2: Solo in lui trova vera luce il mistero dell'uomo.
1: यह केवल वे हैं जिनमें मानव जीवन का रहस्य अपनी सच्ची ज्योति को प्राप्त करता है। उन्हीं से हम दुख और मृत्यु के रहस्य को समझने हेतु आलोकित होते हैं, और उन्हीं के संग हम पुनरुत्थान की ओर यात्रा करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, ईश्वर के रूप में बनाए गए यीशु ख्रिस्त में और उनके खातिर हमने एक अद्वितीय और अमिट सम्मान को पाया है। आइए हम सुसमाचार की ज्योति और शक्ति के साथ सदैव इसे बढ़ावा दें और इसकी रक्षा करने का संकल्प करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। इस आंदोलन को औपचारिक रूप से मरिया का काम के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1942 में इटली की क्यारा लुबिक ने की थी। अपने संबोधन में संत पापा ने कहा कि धर्माध्यक्षों की यह मुलाकात फोकोलारे आंदोलन के दोस्तों के तौर पर उनके आपसी स्नेह को दर्शाती है, क्योंकि वे अलग अलग देशों और सामाजिक परिवेश से आते हैं। संत पापा लियो ने एकता की गवाही देने पर उनके ध्यान की सराहना की और कहा, एकता का विषय उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा, आज के दौर में जब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, हमारे प्रभु ने क्यारा लुबिक को एकता की भावना और सेवा की गवाही देने में सक्षम बनाया, जिससे वह अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। संत पापा ने कहा कि कलीसिया यह जिम्मेदारी निभाती रहेगी। उन्होंने उन पूर्वाग्रहों, नस्लवाद, धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का जिक्र किया जिनका सामना धर्माध्यक्ष अपने देशों में करते हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में परिवार, दोस्ती और समुदाय के जो नेटवर्क पहले मजबूत हुआ करते थे, वे अब बुरी तरह से बिखर रहे हैं। जैसे जैसे समाज में व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनी मर्जी चलाने की आज़ादी के तौर पर पेश किया जाता है, ताकि लोग बिना किसी नैतिक, प्राकृतिक या मानवीय सीमा के खुशी की तलाश कर सकें। संत पापा लियो ने कहा, दूसरों के प्रति खुलेपन की कमी हमारी एकता की भावना को खराब करती है और वास्तव में हमारी खुशी को छीन लेती है, जिसे संत पापा ने कहा कि हम केवल त्रिएक ईश्वर के साथ एकता में पाते हैं। पिता के हृदय को प्रकट करके मसीह हमें हमारे अस्तित्व, हमारे रिश्तों और खुशी मार्ग का सबसे गहरा अर्थ दिखाते हैं। आत्मा के उपहार के माध्यम से हम ईश्वर की संतान, दिव्य जीवन के भागीदार बन गए हैं। मसीह में ईश्वर की संतान के रूप में अपनी सहभागिता को अपनाकर हम कलीसिया की सहभागिता के रहस्य में भाग लेते हैं और हमारी दुनिया में खमीर और एकता के संकेत के रूप में कार्य करते हैं। अंत में संत पापा ने फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों को मानव परिवार की इस लंबे समय से चली आ रही एकता का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया। और मंगलवार 8 सितंबर को नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया डिंग यांग का धर्माध्यक्ष अभिषेक किया गया। 28 जुलाई 2026 को संत पापा लियो 14वें ने उन्हें चोंगकिंग का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति परम धर्म पीठ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच हुए अस्थायी समझौते के तहत उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी मिलने के बाद की गई। महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया का जन्म 16 सितंबर 1981 को चोंगकिंग के हेचुआन जिले में हुआ। 2000 से 2006 तक उन्होंने बीजिंग के सेमिनरी में पढ़ाई की। 14 मई 2007 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। इसके बाद उन्होंने उसी पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा दी। 2012 से 2014 तक उन्होंने बीजिंग में राष्ट्रीय सेमिनरी के प्रशिक्षक के तौर पर काम किया। मार्च 2014 में वे रोम चले गए। वहां उन्होंने होली क्रॉस परम धर्म पीठ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अगले साल चीन वापस लौटे। बाद में उन्होंने चोंगकिंग महाधर्म प्रांत की अनेक पल्लियों में पल्ली पुरोहित के तौर पर अपनी सेवा दी। आज 9 सितंबर हमलोंग से शिक्षा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ याद दिलाता है कि दुनिया भर में संकटों की वजह से 93 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2005 से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्रों में स्कूलों पर 15,000 से अधिक हमलों की पुष्टि की। अकेले 2025 में विश्व स्तर पर स्कूलों पर 1,600 से अधिक हमले हुए हैं। इसका प्रभाव न केवल शिक्षा तक पहुंच पर बल्कि सीखने पर भी पड़ता है।
संघर्ष प्रभावित देशों के 90% से अधिक बच्चे 10 वर्ष की आयु तक साधारण पाठ पढ़ने में असमर्थ होते हैं। स्कूल से दूर बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल मजदूरी, कम उम्र में शादी, बेघर होना और हथियारबंद गुट द्वारा भर्ती जैसे सुरक्षा के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शिक्षा को बचाने की जरूरत को पहचाना। आज तक 123 देशों ने सुरक्षित स्कूलों पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को हथियारबंद लड़ाई के असर से बचाने और मुश्किल समय में भी पढ़ाई जारी रखने का वादा करता है। उधर उत्तर कोरिया और रूस के बीच पहला सड़क संपर्क पिछले सोमवार को दोनों देशों के बीच सीमा पर एक पुल का उद्घाटन किया गया, जिसे यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ बढ़ते सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। बुनियादी ढांचा तुमेन नदी तक फैला है, जो उनकी साझा सीमा को चिन्हित करता है, एक सीमा जो अपनी सीमित क्षेत्रीय सीमा के बावजूद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर कोरिया रूस के साथ केवल 17 किलोमीटर की दूरी को साझा करता है, जो उत्तरी सीमा का एक छोटा सा हिस्सा है, जो 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है और बड़े पैमाने पर चीन के साथ साझा करती है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किए जाने के बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच संबंध काफी बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूस के कुर्स्क इलाके, जो यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट से सटा हुआ है, में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी और कीव के खिलाफ रूसी सैन्य अभियानों में मदद के लिए सप्लाई भेजे जाने की खबरें बार बार आई हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया, जो प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहता है, उसे मॉस्को से लगातार आर्थिक मदद, भोजन, ऊर्जा और सैन्य तकनीक मिलती रहती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत

0: la Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस अपने प्रथम अध्याय को मानवीय सम्मान हेतु समर्पित करते हुए इस बात पर बल देता है कि यह उन मूल्यों और निधियों की आधारशिला है जिन्हें आज सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे मानव हृदय की भ्रष्टता से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियों से अपने को दूर करने के क्रम में दिव्य उत्पत्ति से अपने संबंध को ना खोएं। वह यात्रा जिसके द्वारा मूलभूत विशेषताएं और मानवीय सम्मान के अधिकारों को प्रकाशित किया गया है, निश्चित रूप में मानव इतिहास के अति महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को प्रस्तुत करता है। यद्यपि इसका मार्ग आगे अपनी पूर्णता को प्राप्त करने से है और उसे चाहिए कि वह विरोधाभावों को घोषित करे, नए और पुराने दोनों को, जो पूर्णता के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि कलीसिया स्पष्ट रूप में अपना सहयोग देती है, यह याद दिलाते हुए कि मानवीय सम्मान की उपस्थिति व्यक्ति की गरिमा से होती है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने भी फिलहाल के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर जोर दिया है। ईश्वर की योजना और इच्छा यह है कि हम मानव उनके संग, दूसरों के संग और सृष्टि के संग एकता में प्रवेश करें। मानवीय सम्मान व्यक्ति की योग्यताओं, धन या जीवन के ओहदे पर निर्भर नहीं करता है और ना ही सही या गलत चुनाव में ही, बल्कि यह एक उपहार है जो हर व्यक्ति को आगे और अपने से परे ले चलता है, जिसे ईश्वर ने अपने शर्तहीन प्रेम के रूप में प्रदान किया है। मानव जीवन का अनंत सम्मान इस भांति ईश्वर के रूप में बनाए गए एक प्राणी स्वरूप अपनी पहचान में निहित है, जहां वह अपने सृष्टिकर्ता को जानने और उसे प्रेम करने की योग्यता रखता है। एक योजना और प्रेम का उपहार जो उसे श्रेष्ठ अन्य प्राणियों से परे ले चलता है, जो उसकी देख रेख में सौंपी गई है, उन पर अधिकार करो और उनका उपयोग ईश्वर की महिमा हेतु करो। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वास में हम मानवीय सम्मान के मूलभूत तथ्य को समझ सकते हैं, क्योंकि पुत्र पिता के रहस्य और उनके प्रेम के प्रकटीकरण में मानव के संग मानव को पूर्ण रूपेण प्रकट करती और उसकी सर्वोच्च बुलाहट को स्पष्ट करते हैं। हम व्यक्ति में सदैव संबंध, एकता और प्रतिभागिता को पाते हैं जो ईश्वर और दूसरों के संग जुड़ा हुआ है। अतः यह ईश्वर पिता के संग, पुत्रवत और यीशु ख्रीस्त तथा सारी मानवता के संग एक भ्रातृत्वपूर्ण संबंध है। यह हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग करता है।
0: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere.
1: एक व्यक्ति होने की अनुभूति का अर्थ अपने को एक उपहार स्वरूप दूसरों को देना है, स्वीकार्य के मनोभाव में। इस तरह यह आदान प्रदान और सेवा में विकसित होना और प्रौढ़ता को प्राप्त करना है। संत पापा लियो ने कहा कि यह उत्तरदायित्व हर एक को सौंपा गया है, वहीं यह हमसे एकता और आपसी देख रेख की मांग करती है, जिसके द्वारा हम कई असत्यों और तोल मोलों पर विजयी होते हैं, जो आज भी इसके संबंध में हमारी समझ को विकृत करती और इसके कार्यान्वयन में बाधक बनती है। वास्तव में इतिहास में लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो इस सम्मान के विरुद्ध गए, यहाँ तक कि आज भी मनुष्य अंदर से अपने में विभाजित है और मानव का सारा जीवन, चाहे वह व्यक्तिगत या सामुदायिक क्यों ना हो, अपने को अच्छाई और बुराई तथा ज्योति और अंधकार के मध्य संघर्ष करता पाता है। यह क्षणभंगुर और सीमित स्थिति यद्यपि अपने में आशा से देखी जा सकती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं मानव को मुक्ति और शक्ति प्रदान करने आए, उसे अंदर से नवीन करने और इस दुनिया के राजा को हराने हेतु जो उसे पापों में बंधक बनाए रखता है। इससे भी बढ़कर धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस इस बात को सुदृढ़ करता है कि

0: मानवीय सम्मान का तात्पर्य पूरे व्यक्ति से है और इसलिए हमें दोहरे नजरिए से आगे जाने की जरूरत है। यद्यपि मानव शरीर और आत्मा है, वह अपने में एक है। शरीर को एक वस्तु तक सीमित करना, उसके संग स्वच्छंदता से पेश आना हमेशा व्यक्ति की गरिमा का अपमान करना है। शरीर से घृणा करना मानव के लिए अस्वीकार्य है और उससे इस बात की मांग की जाती है कि वह उसकी देखरेख अच्छी तरह और आदर से करे, क्योंकि ईश्वर ने उसका निर्माण किया है और वे उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करेंगे। वहीं हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह हृदय के बुरे रुझानों का गुलाम ना हो, क्योंकि हम सभी पाप से अपने को घायल पाते हैं। अंततः संत पापा लियो ने कहा कि मानवीय सम्मान के संबंध में गौडियम एट स्पेस तीन अति महत्वपूर्ण बातों की याद दिलाती है। बुद्धिमता, जो मानव को सच्चाई की खोज से संबंधित असंतोष में जिज्ञासु बनाती है। अंतःकरण, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को एकता और अर्थ प्रदान करता है। और स्वतंत्रता, जिसके द्वारा वह अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। इन आयामों को हम एक दूसरे के संग निकटता से संयुक्त पाते हैं। यह अंतःकरण है जहां सच्चाई की पहचान होती है जैसे कि वह है, और स्वतंत्रता उसे मौलिकता और संभावना के रूप में अनुभव करती है। पवित्र आत्मा, जो ख्रिस्त में जीवन प्रदान करते हैं, हमें स्वतंत्र करते और ईश्वरीय संतान स्वरूप निरंतर हमारे सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। वे हमें भय से बचाते और अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, जहां हम जीवन की परिपूर्णता को मृत्यु से परे पाते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा ख्रिस्त ने हमारे लिए की है।
1: Solo in lui trova vera luce il mistero dell'uomo.
0: यह केवल वे हैं जिनमें मानव जीवन का रहस्य अपनी सच्ची ज्योति को प्राप्त करता है। उन्हीं से हम दुख और मृत्यु के रहस्य को समझने हेतु आलोकित होते हैं और उन्हीं के संग हम पुनरुत्थान की ओर यात्रा करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, ईश्वर के रूप में बनाए गए यीशु ख्रिस्त में और उनके खातिर हमने एक अद्वितीय और अमिट सम्मान को पाया है। आइए हम सुसमाचार की ज्योति और शक्ति के साथ सदैव इसे बढ़ावा दें और इसकी रक्षा करने का संकल्प करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। इस आंदोलन को औपचारिक रूप से मरिया का काम के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1942 में इटली की क्यारा लुबिक ने की थी। अपने संबोधन में संत पापा ने कहा कि धर्माध्यक्षों की यह मुलाकात फोकोलारे आंदोलन के दोस्तों के तौर पर उनके आपसी स्नेह को दर्शाती है, क्योंकि वे अलग अलग देशों और सामाजिक परिवेश से आते हैं। संत पापा लियो ने एकता की गवाही देने पर उनके ध्यान की सराहना की और कहा, एकता का विषय उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा, आज के दौर में जब समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, हमारे प्रभु ने क्यारा लुबिक को एकता की भावना और सेवा की गवाही देने में सक्षम बनाया, जिससे वह अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। संत पापा ने कहा कि कलीसिया यह जिम्मेदारी निभाती रहेगी। उन्होंने उन पूर्वाग्रहों, नस्लवाद, धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का जिक्र किया जिनका सामना धर्माध्यक्ष अपने देशों में करते हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में परिवार, दोस्ती और समुदाय के जो नेटवर्क पहले मजबूत हुआ करते थे, वे अब बुरी तरह से बिखर रहे हैं। जैसे जैसे समाज में व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनी मर्जी चलाने की आज़ादी के तौर पर पेश किया जाता है, ताकि लोग बिना किसी नैतिक, प्राकृतिक या मानवीय सीमा के खुशी की तलाश कर सकें। संत पापा लियो ने कहा, दूसरों के प्रति खुलेपन की कमी हमारी एकता की भावना को खराब करती है और वास्तव में हमारी खुशी को छीन लेती है, जिसे संत पापा ने कहा कि हम केवल त्रिएक ईश्वर के साथ एकता में पाते हैं। पिता के हृदय को प्रकट करके मसीह हमें हमारे अस्तित्व, हमारे रिश्तों और खुशी मार्ग का सबसे गहरा अर्थ दिखाते हैं। आत्मा के उपहार के माध्यम से हम ईश्वर की संतान, दिव्य जीवन के भागीदार बन गए हैं। मसीह में ईश्वर की संतान के रूप में अपनी सहभागिता को अपनाकर हम कलीसिया की सहभागिता के रहस्य में भाग लेते हैं और हमारी दुनिया में खमीर और एकता के संकेत के रूप में कार्य करते हैं। अंत में संत पापा ने फोकोलारे आंदोलन से जुड़े धर्माध्यक्षों को मानव परिवार की इस लंबे समय से चली आ रही एकता का गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया। और मंगलवार 8 सितंबर को नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया डिंग यांग का धर्माध्यक्ष अभिषेक किया गया। 28 जुलाई 2026 को संत पापा लियो 14वें ने उन्हें चोंगकिंग का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति परम धर्म पीठ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच हुए अस्थायी समझौते के तहत उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी मिलने के बाद की गई। महाधर्माध्यक्ष अंद्रेया का जन्म 16 सितंबर 1981 को चोंगकिंग के हेचुआन जिले में हुआ। 2000 से 2006 तक उन्होंने बीजिंग के सेमिनरी में पढ़ाई की। 14 मई 2007 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। इसके बाद उन्होंने उसी पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा दी। 2012 से 2014 तक उन्होंने बीजिंग में राष्ट्रीय सेमिनरी के प्रशिक्षक के तौर पर काम किया। मार्च 2014 में वे रोम चले गए। वहां उन्होंने होली क्रॉस परम धर्म पीठ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अगले साल चीन वापस लौटे। बाद में उन्होंने चोंगकिंग महाधर्म प्रांत की अनेक पल्लियों में पल्ली पुरोहित के तौर पर अपनी सेवा दी। आज 9 सितंबर हमलोंग से शिक्षा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ याद दिलाता है कि दुनिया भर में संकटों की वजह से 93 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2005 से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्रों में स्कूलों पर 15,000 से अधिक हमलों की पुष्टि की। अकेले 2025 में विश्व स्तर पर स्कूलों पर 1,600 से अधिक हमले हुए हैं। इसका प्रभाव न केवल शिक्षा तक पहुंच पर बल्कि सीखने पर भी पड़ता है।
संघर्ष प्रभावित देशों के 90% से अधिक बच्चे 10 वर्ष की आयु तक साधारण पाठ पढ़ने में असमर्थ होते हैं। स्कूल से दूर बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल मजदूरी, कम उम्र में शादी, बेघर होना और हथियारबंद गुट द्वारा भर्ती जैसे सुरक्षा के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शिक्षा को बचाने की जरूरत को पहचाना। आज तक 123 देशों ने सुरक्षित स्कूलों पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को हथियारबंद लड़ाई के असर से बचाने और मुश्किल समय में भी पढ़ाई जारी रखने का वादा करता है। उधर उत्तर कोरिया और रूस के बीच पहला सड़क संपर्क पिछले सोमवार को दोनों देशों के बीच सीमा पर एक पुल का उद्घाटन किया गया, जिसे यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ बढ़ते सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। बुनियादी ढांचा तुमेन नदी तक फैला है, जो उनकी साझा सीमा को चिन्हित करता है, एक सीमा जो अपनी सीमित क्षेत्रीय सीमा के बावजूद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दरअसल उत्तर कोरिया रूस के साथ केवल 17 किलोमीटर की दूरी को साझा करता है, जो उत्तरी सीमा का एक छोटा सा हिस्सा है, जो 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है और बड़े पैमाने पर चीन के साथ साझा करती है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किए जाने के बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच संबंध काफी बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूस के कुर्स्क इलाके, जो यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट से सटा हुआ है, में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी और कीव के खिलाफ रूसी सैन्य अभियानों में मदद के लिए सप्लाई भेजे जाने की खबरें बार बार आई हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया, जो प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में रहता है, उसे मॉस्को से लगातार आर्थिक मदद, भोजन, ऊर्जा और सैन्य तकनीक मिलती रहती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृत का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रति

0: करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

प्रेम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

यदि कोई आलसी है तो उसकी छत बैठ जाती है, यदि उसके हाथ सुस्त हैं तो घर में पानी चूता है। लोग मन बहलाने के लिए भोजन करते और अंगूरी जीवन को आनंदपूर्ण बनाती है, किंतु धन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो और अपने शयन कक्ष में भी धनी को मत धिक्कारो, क्योंकि आकाश की कोई चिड़िया तुम्हारे शब्द उड़ा लेगी, कोई पंखदार जीव तुम्हारी बात को प्रकट कर देगा। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के अंतिम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाने के बाद उपदेशक एक अच्छे राजा और उत्तम शासक का विवरण देता है। देश के लिए, उसकी जनता के लिए क्या उचित है और क्या नहीं, उसका वह उल्लेख करता है तथा बुराई के विरुद्ध सावधान रहने की सलाह देता है। उपदेशक आलस और आलसी की निंदा करता है, कहता है कि आलस की वजह से इमारत ध्वस्त हो जाती है, आलसी शासक देश को तहस नहस कर देता है, उसके रहने से लोग गरीब और दीन दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार धन, भोजन और अंगूरी की अति में लिप्त राजा या शासक राष्ट्र और देश का अहित कर देता है, उस देश पर संकट छा जाता है जिसका शासक सजग और सचेत नहीं रहता, जो मतलबी होता है, लालची होता है, भ्रष्टाचार और बेईमानी करता है, जबकि ईमानदार और समझदार शासक देश को सफलता की ओर ले जाता है। श्रोताओं, सांसारिक और भौतिक जीवन के जितने भी कार्यकलाप हैं, उन्हें व्यक्ति किस प्रकार निभा सकता है और उसके जीवन में इन कार्यों का क्या महत्व है, इसी पर उपदेशक प्रकाश डालता है। वह यह भी स्मरण दिलाता है कि व्यक्ति अपने जीवन कार्यों में इतना भी लिप्त न हो जाए कि वह अन्यों की तरफ से लापरवाह हो जाए या फिर स्वयं ईश्वर को ही भूल जाए। उपदेशक सुलेमान ने भी अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय ईश्वर की, या फिर यूं कहें कि ईश्वर की सहायता की आवश्यकता को महसूस किया था। श्रोताओं, इसीलिए बाइबल धर्म ग्रंथ के राजाओं के पहले ग्रंथ में हमें सुलेमान की प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। इस प्रार्थना में सुलेमान प्रभु से विवेक और समझदारी का वरदान मांगता है, ताकि वह न्यायपूर्वक और सत्य के राह पर चलकर अपनी प्रजा का शासन कर सके। प्रभु ईश्वर के वरदान के फल स्वरूप ही सुलेमान को भला और बुरा पहचानने का विवेक मिला था। इस तरह उपदेशक उस युग के और आज के युग के लोगों से भी विवेक और समझदारी के लिए प्रार्थना का आह्वान करता है। उन प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की जाए जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और अंतर्यामी है।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इसमें उपदेशक ने कर्तव्य करने पर ध्यान आकर्षित कराया है। यदि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करता है तो वह जीवन का आनंद उठा पाएगा। 11वें अध्याय के प्रथम 4 पदों में उपदेशक कहता है, अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते

जो निवेश किए धन की वापसी हेतु बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहते थे। तात्पर्य यह कि धैर्य और दूरदर्शिता के साथ काम करना ही समझदारी है। भले ही तुरंत लाभ न मिले, धैर्य से प्रतीक्षा करने पर वह अवश्य मिल जाएगा। वस्तुतः प्राचीन काल में भरोसे पर ही व्यापार होता था। व्यावसायिक लक्ष्य से निकले जहाजों को कई कई दिनों तक अपने पैसों के लिए रुक जाना पड़ता था। उसी की ओर उपदेशक ने इशारा किया है। दूसरी ओर बाइबल आचार्य जैसे फॉन ट्रैप, क्लार्क आदि ने यहां तक सुझाया है कि इस पद का अर्थ उदारता से अपनी रोटी को साझा करना है। उनके अनुसार अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरों से अभिप्राय यही कि भौतिक चीजें जरूरतमंदों को इस तरह दो कि वह बेकार लगें, जैसे पानी पर रोटी फेंकी जाती हो और तुम उसके लिए पुरस्कृत किए जाओगे। यदि इसका यही मतलब है तो बात भी वही है। अभी कुछ करो ताकि फल भले ही तुरंत न दिखे, वह अवश्य मिलेगा। तदुपरांत उपदेशक कहता है, अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। उपदेशक यहाँ उदारता की सलाह देता है और ऐसा वह इस बात को ध्यान में रखते हुए करता है कि भविष्य भले ही अनिश्चित हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 7 या 8 लोगों में अपना धन बांटने का परामर्श स्पष्ट है और वह यह कि हर मौके का अंदाजा लगाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या मुसीबत आ सकती है और ऐसी अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना समझदारी है। आगे उपदेशक कहता है, जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता है वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता है वह नहीं लुनता। इन पदों में सुलेमान ने कारण और प्रभाव के विचार पर बल दिया है। यही सिद्धांत हमें अनंत की ओर ले जाता है, क्योंकि इस दुनियावी जिंदगी में इंसान की बुराई या अच्छाई का जवाब प्रायः इस जीवन में नहीं मिलता। कारण का जरूरी असर अनंत के लिए महसूस होना चाहिए। बादल जब पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं, तथा पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं, किंतु इन्हीं का उदाहरण देकर उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि जिसकी नियति जैसी है वैसी ही होगी। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने का कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार उपदेशक कहता है, जो हवा पर ही ध्यान रखता है वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। श्रोताओ, यदि हम ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय परिस्थितियों को, हालातों को देखते रहेंगे तो हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोषी ठहराए जाएंगे। ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर बोने के लिए अर्थात कुछ करने के लिए प्रेषित किया है। हम हमारे समय का सदुपयोग करें तथा अपने कामों के उत्तम फल उत्पन्न करें, यही अपेक्षा की जाती है। यदि हम किसी बहाने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो हम सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अस्तु, मनुष्य अविश्वास, विद्रोह, मूर्खतापूर्ण भय और आलस्य का परित्याग करे तथा ईश्वर में अपना विश्वास सुदृढ़ रख कर अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाए।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने प्रशिक्षण कोर्स में भाग ले रहे नए धर्मदक्षों को आमंत्रित किया है कि वे भले चरवाहे यीशु के समान दिल रखें और तेजी से बदलती दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपने दिल में जगह दें। पोप लियो चौदहवें ने गुरुवार को उन धर्मदक्षों से मुलाकात की जो रोम में एक प्रशिक्षण कोर्स में भाग ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है धर्मदक्ष कलीसिया और आज की दुनिया में संचार के सेवक। अपने भाषण में पोप ने नवनियुक्त धर्मदक्षों से कहा कि वे एक अनोखे तरह के भ्रातृत्व के लिए बुलाए गए हैं और वे कभी अकेले नहीं चलते, क्योंकि वे अपनी देखभाल में सौंपे गए लोगों के लिए अपनी उम्मीदें एवं सपने साझा करते हैं। उनकी प्रेरिताई के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को धर्मदक्ष के दिल में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए पहले से ही ख्रिस्त के दिल में जगह है। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे यीशु के साथ रहें, अपने सबसे आवश्यक प्राथमिकताओं के रूप में उनसे और उनके बारे में बात करें और प्रार्थना में समय बिताएं। उन्होंने कहा, प्रभु के साथ अपने समय को हमेशा महत्व दें। यूकरिस्ट, ईश्वचन, प्रार्थना और उन पलों के माध्यम से जिसमें आप एक शिष्य के सरल दिल से उनकी उपस्थिति में रह सकते हैं, जो खुद को अपने प्रभु से प्यार करने देता है। पोप लियो ने नए धर्मदक्षों को आमंत्रित किया कि वे भले चरवाहे यीशु का दिल रखें, पूरी तरह से पिता की ओर मुड़े और उसे अपने भाइयों एवं बहनों को दें। उन्होंने कहा, एक धर्मदक्ष हर दिन अपने लोगों से और गहराई से प्यार करना सीखता है और उनके सुख दुख को जानना, उनके सपनों को साझा करना और समुदायों को बढ़ते देकर खुश होना सीखता है। जब वे पुरोहित और उपयाजक का अभिषेक करते हैं, जोशीले युवाओं से मिलते हैं और मुश्किलों में लोगों के साथ चलते हैं, तो धर्मदक्ष को उन सभी लोगों से प्यार करने के लिए कहा जाता है जिन्हें प्रभु ने उन्हें सौंपा है। पोप ने आगे कहा, आप मिशन की खूबसूरती और मांग दोनों को जानते हैं और उस कलीसिया के बारे भी जिसके पास भले ही कम संसाधन हो लेकिन जो बहुत अधिक विश्वास से भरा हो। इसलिए मैं आपको एक मिशनरी दिल बनाए रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पोप लियो ने नए धर्मदर्शों से कहा कि वे हमारी प्रेरितिक सेवा को अपने दिल में रखें, जिसका मतलब है अपने पुरोहितों को अपने दिल में जगह देना। उनकी सेवा प्यार की सेवा है, जिससे वे उपदेश, प्रार्थना, समझदारी एवं दूसरों के साथ बिताए के समय में व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ संभावनाओं का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, धर्मदक्षों को मुक्ति का सुसमाचार सभी लोगों तक सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी मानव को पाप और उनके नतीजों से मुक्त नहीं कर सकती। उन्होंने धर्मदर्शों को अपने विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर चिंतन एवं चर्चा करने का मौका देने के लिए भी आमंत्रित किया, ताकि सभी उनके बताए दृष्टिकोण के हिसाब से प्यार की सभ्यता बनाने में मदद कर सकें। और अंत में संत पापा ने कहा, आइए हम अपने लोगों के साथ चलें, उनके साथ प्रार्थना करें, उनके साथ वचन सुनें और उनके साथ ख्रिस्त्याग अर्पित करें। फ्रांसीसी कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जो मार्क एवलिन ने अन्य धर्मदक्षों के साथ एक प्रेस सम्मेलन में फ्रांस में पोप लियो चौदहवें की आगामी प्रेरितिक यात्रा की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जो 25 से 28 सितम्बर को होने वाली है। उन्होंने बजट, आयोजन प्रयासों, यात्रा के प्रतीक चिन्ह, दुराचार पीड़ितों से पोप की मुलाकात और कई अन्य बातों पर चर्चा की। कार्डिनल एवलिन, जो मर्सिले के महाधर्मदक्ष और फ्रांस के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, कहा, मैंने बहुत पहले से ही पोप को फ्रांस आने का प्रस्ताव दिया था। वे 8 सितंबर की सुबह धर्मदक्ष सम्मेलन के मुख्यालय में दूसरे धर्मदक्षों के साथ प्रेरितिक यात्रा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि पोप फ्रांस आने में रुचि रख रहे थे, लेकिन समस्या तारीख ढूंढने की थी। उन्हें शुरू में बताया गया था कि 2026 बहुत जल्दी है और पोप के कार्यक्रमों की सूची पहले से ही भरी हुई है, लेकिन उन्होंने इसी साल यात्रा आयोजित करने की कोशिश पर जोर दिया। कार्डिनल ने कहा, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सब कुछ तैयार करने के लिए सिर्फ 4 महीने थे। मैं उस अधिकारी से बात करने गया जो पोप के कार्यक्रमों की सूची तैयार करता है, और एक हफ्ता का समय खाली मिला क्योंकि पेरू की एक यात्रा रद्द हो गई थी। इस तरह पोप लियो चौदहवें की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा आयोजित की गई। उन्होंने कहा,
तैयारी करने के लिए सिर्फ 4 महीने थे। इसमें पेरिस में खास जगहों को सुरक्षित करना, स्टैंड दी फ्रांस स्टेडियम में जागरण प्रार्थना का इंतजाम करना, लूर्द में सार्वजनिक एवं सुरक्षित क्षेत्र तैयार करना और मेट शहर में छोटे चौकों और गिरजाघरों को व्यवस्थित करना शामिल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्डिनल एवलिन ने यात्रा के प्रतीक चिन्ह के बारे भी बताया। इसका आदर्श वाक्य है, ताकि दुनिया को जीवन मिले। यह वाक्यांश संत योहान रचित सुसमाचार से प्रेरित है और कुछ लोगों ने इसे जुलाई में फ्रेंच पार्लियामेंट द्वारा मंजूर किए गए आत्महत्या में मदद बिल पर चल रही बहस से जुड़ा हुआ समझा। कार्डिनल एवलिन ने इसका किसी भी राजनीतिक अर्थ से इनकार किया है, लेकिन इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि यह आदर्श वाक्य मानव जीवन की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक संदेश है। कारितास इंटरनेशनल और कारितास इटालियन उन उदार संगठनों में से हैं जो नेपाल की मदद करने में सबसे आगे हैं। नेपाल 26 अगस्त को ग्लेशियर पिघलने से आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुनिया भर के कारितास संगठन अपने नेपाली बहन संगठन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो 26 अगस्त को आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाढ़ में करीब 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 5000 से अधिक लोग बेघर हो गए और घर एवं संरचनाएं तबाह हो गए। कारितास इंटरनेशनल कारितास जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो पहले से ही वहां मौजूद है, कारितास नेपाल और बाल एवं युवा सहयोगात्मक नेटवर्क के साथ काम कर रही हैं। खाना आपूर्ति, मनोवैज्ञानिक सहायता देना और मानव तस्करी रोकना उनकी प्राथमिकताएं हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

यदि कोई आलसी है तो उसकी छत बैठ जाती है, यदि उसके हाथ सुस्त हैं तो घर में पानी चूता है। लोग मन बहलाने के लिए भोजन करते और अंगूरी जीवन को आनंदपूर्ण बनाती है, किंतु धन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो और अपने शयन कक्ष में भी धनी को मत धिक्कारो, क्योंकि आकाश की कोई चिड़िया तुम्हारे शब्द उड़ा लेगी, कोई पंखदार जीव तुम्हारी बात को प्रकट कर देगा। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के अंतिम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाने के बाद उपदेशक एक अच्छे राजा और उत्तम शासक का विवरण देता है। देश के लिए, उसकी जनता के लिए क्या उचित है और क्या नहीं, उसका वह उल्लेख करता है तथा बुराई के विरुद्ध सावधान रहने की सलाह देता है। उपदेशक आलस और आलसी की निंदा करता है, कहता है कि आलस की वजह से इमारत ध्वस्त हो जाती है। आलसी शासक देश को तहस नहस कर देता है, उसके रहने से लोग गरीब और दीन दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार धन, भोजन और अंगूरी की अति में लिप्त राजा या शासक राष्ट्र और देश का अहित कर देता है। उस देश पर संकट छा जाता है जिसका शासक सजग और सचेत नहीं रहता, जो मतलबी होता है, लालची होता है, भ्रष्टाचार और बेईमानी करता है, जबकि ईमानदार और समझदार शासक देश को सफलता की ओर ले जाता है। श्रोताओं, सांसारिक और भौतिक जीवन के जितने भी कार्यकलाप हैं, उन्हें व्यक्ति किस प्रकार निभा सकता है और उसके जीवन में इन कार्यों का क्या महत्व है, इसी पर उपदेशक प्रकाश डालता है। वह यह भी स्मरण दिलाता है कि व्यक्ति अपने जीवन कार्यों में इतना भी लिप्त न हो जाए कि वह अन्यों की तरफ से लापरवाह हो जाए या फिर स्वयं ईश्वर को ही भूल जाए। उपदेशक सुलेमान ने भी अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय ईश्वर की, या फिर यूं कहें कि ईश्वर की सहायता की आवश्यकता को महसूस किया था। श्रोताओं, इसीलिए बाइबल धर्म ग्रंथ के राजाओं के पहले ग्रंथ में हमें सुलेमान की प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। इस प्रार्थना में सुलेमान प्रभु से विवेक और समझदारी का वरदान मांगता है, ताकि वह न्यायपूर्वक और सत्य की राह पर चलकर अपनी प्रजा का शासन कर सके। प्रभु ईश्वर के वरदान के फल स्वरूप ही सुलेमान को भला और बुरा पहचानने का विवेक मिला था। इस तरह उपदेशक उस युग के और आज के युग के लोगों से भी विवेक और समझदारी के लिए प्रार्थना का आह्वान करता है। उन प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की जाए जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और अंतर्यामी है।

अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इसमें उपदेशक ने कर्तव्य करने पर ध्यान आकर्षित कराया है। यदि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करता है तो वह जीवन का आनंद उठा पाएगा। 11वें अध्याय के प्रथम 4 पदों में उपदेशक कहता है, अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह कभी लुनता नहीं। अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। श्रोताओ, 11वें अध्याय के पहले पद के ये शब्द का संदर्भ संभवतः जहाजों के समूह का जिक्र है, जो निवेश किए धन की वापसी हेतु बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहते थे। तात्पर्य यह कि धैर्य और दूरदर्शिता के साथ काम करना ही समझदारी है। भले ही तुरंत लाभ न मिले, धैर्य से प्रतीक्षा करने पर वह अवश्य मिल जाएगा। वस्तुतः प्राचीन काल में भरोसे पर ही व्यापार होता था। व्यावसायिक लक्ष्य से निकले जहाजों को कई कई दिनों तक अपने पैसों के लिए रुक जाना पड़ता था। उसी की ओर उपदेशक ने इशारा किया है। दूसरी ओर बाइबल आचार्य जैसे फॉन ट्रैप, क्लार्क आदि ने यहां तक सुझाया है कि इस पद का अर्थ उदारता से अपनी रोटी को साझा करना है। उनके अनुसार अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरों से अभिप्राय यही कि भौतिक चीजें जरूरतमंदों को इस तरह दो कि वह बेकार लगें, जैसे पानी पर रोटी फेंकी जाती हो और तुम उसके लिए पुरस्कृत किए जाओगे। यदि इसका यही मतलब है तो बात भी वही है, अभी कुछ करो ताकि फल भले ही तुरंत न दिखे वह अवश्य मिलेगा। तदुपरांत उपदेशक कहता है, अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। उपदेशक यहां उदारता की सलाह देता है और ऐसा वह इस बात को ध्यान में रखते हुए करता है कि भविष्य भले ही अनिश्चित हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 7 या 8 लोगों में अपना धन बांटने का परामर्श स्पष्ट है और वह यह कि हर मौके का अंदाजा लगाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या मुसीबत आ सकती है और ऐसी अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना समझदारी है। आगे उपदेशक कहता है, जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता है वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता है वह नहीं लुनता। इन पदों में सुलेमान ने कारण और प्रभाव के विचार पर बल दिया है। यही सिद्धांत हमें अनंत की ओर ले जाता है, क्योंकि इस दुनियावी जिंदगी में इंसान की बुराई या अच्छाई का जवाब प्रायः इस जीवन में नहीं मिलता। कारण का जरूरी असर अनंत के लिए महसूस होना चाहिए। बादल जब पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं, तथा पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं, किंतु इन्हीं का उदाहरण देकर उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि जिसकी नियति जैसी है वैसी ही होगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने का कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार उपदेशक कहता है, जो हवा पर ही ध्यान रखता है वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। श्रोताओ, यदि हम ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय परिस्थितियों को, हालातों को देखते रहेंगे तो हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोषी ठहराए जाएंगे। ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर बोने के लिए अर्थात कुछ करने के लिए प्रेषित किया है। हम हमारे समय का सदुपयोग करें तथा अपने कामों के उत्तम फल उत्पन्न करें, यही अपेक्षा की जाती है।
यदि हम किसी बहाने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो हम सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अस्तु, मनुष्य अविश्वास, विद्रोह, मूर्खतापूर्ण भय और आलस्य का परित्याग करे तथा ईश्वर में अपना विश्वास सुदृढ़ रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाए।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने प्रशिक्षण कोर्स में भाग ले रहे नए धर्माध्यक्षों को आमंत्रित किया है कि वे भले चरवाहे यीशु के समान दिल रखें और तेजी से बदलती दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपने दिल में जगह दें। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को उन धर्माध्यक्षों से मुलाकात की जो रोम में एक प्रशिक्षण कोर्स में भाग ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है धर्माध्यक्ष कलीसिया और आज की दुनिया में संचार के सेवक। अपने भाषण में पोप ने नवनियुक्त धर्माध्यक्षों से कहा कि वे एक अनोखे तरह के भ्रातृत्व के लिए बुलाए गए हैं और वे कभी अकेले नहीं चलते, क्योंकि वे अपनी देखभाल में सौंपे गए लोगों के लिए अपनी उम्मीदें एवं सपने साझा करते हैं। उनकी प्रेरिताई के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को धर्माध्यक्ष के दिल में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए पहले से ही ख्रिस्त के दिल में जगह है। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे यीशु के साथ रहें, अपने सबसे आवश्यक प्राथमिकताओं के रूप में उनसे और उनके बारे में बात करें और प्रार्थना में समय बिताएं। उन्होंने कहा, प्रभु के साथ अपने समय को हमेशा महत्व दें। यूकरिस्ट, ईश्वचन, प्रार्थना और उन पलों के माध्यम से जिसमें आप एक शिष्य के सरल दिल से उनकी उपस्थिति में रह सकते हैं, जो खुद को अपने प्रभु से प्यार करने देता है। पोप लियो ने नए धर्माध्यक्षों को आमंत्रित किया कि वे भले चरवाहे यीशु का दिल रखें, पूरी तरह से पिता की ओर मुड़ें और उसे अपने भाइयों एवं बहनों को दें। उन्होंने कहा, एक धर्माध्यक्ष हर दिन अपने लोगों से और गहराई से प्यार करना सीखता है और उनके सुख दुख को जानना, उनके सपनों को साझा करना और समुदायों को बढ़ते देकर खुश होना सीखता है। जब वे पुरोहित और उपयाजक का अभिषेक करते हैं, जोशीले युवाओं से मिलते हैं और मुश्किलों में लोगों के साथ चलते हैं, तो धर्माध्यक्ष को उन सभी लोगों से प्यार करने के लिए कहा जाता है जिन्हें प्रभु ने उन्हें सौंपा है। पोप ने आगे कहा, आप मिशन की खूबसूरती और मांग दोनों को जानते हैं और उस कलीसिया के बारे भी जिसके पास भले ही कम संसाधन हो लेकिन जो बहुत अधिक विश्वास से भरा हो। इसलिए मैं आपको एक मिशनरी दिल बनाए रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पोप लियो ने नए धर्माध्यक्षों से कहा कि वे हमारी प्रेरितिक सेवा को अपने दिल में रखें, जिसका मतलब है अपने पुरोहितों को अपने दिल में जगह देना। उनकी सेवा प्यार की सेवा है, जिससे वे उपदेश, प्रार्थना, समझदारी एवं दूसरों के साथ बिताए के समय में व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ संभावनाओं का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, धर्माध्यक्षों को मुक्ति का सुसमाचार सभी लोगों तक सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी मानव को पाप और उनके नतीजों से मुक्त नहीं कर सकती। उन्होंने धर्माध्यक्षों को अपने विश्व पत्र मनीफिका उमानितास पर चिंतन एवं चर्चा करने का मौका देने के लिए भी आमंत्रित किया, ताकि सभी उनके बताए दृष्टिकोण के हिसाब से प्यार की सभ्यता बनाने में मदद कर सकें। और अंत में संत पापा ने कहा, आइए हम अपने लोगों के साथ चलें, उनके साथ प्रार्थना करें, उनके साथ वचन सुनें और उनके साथ ख्रिस्त त्याग अर्पित करें। फ्रांसीसी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जो मार्क एवलिन ने अन्य धर्माध्यक्षों के साथ एक प्रेस सम्मेलन में फ्रांस में पोप लियो 14वें की आगामी प्रेरितिक यात्रा की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जो 25 से 28 सितम्बर को होने वाली है। उन्होंने बजट, आयोजन प्रयासों, यात्रा के प्रतीक चिन्ह, दुराचार पीड़ितों से पोप की मुलाकात और कई अन्य बातों पर चर्चा की। कार्डिनल एवलिन, जो मसीले के महाधर्माध्यक्ष और फ्रांस के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, कहा, मैंने बहुत पहले से ही पोप को फ्रांस आने का प्रस्ताव दिया था। वे 8 सितंबर की सुबह धर्माध्यक्ष सम्मेलन के मुख्यालय में दूसरे धर्माध्यक्षों के साथ प्रेरितिक यात्रा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि पोप फ्रांस आने में रुचि रख रहे थे, लेकिन समस्या तारीख ढूंढने की थी। उन्हें शुरू में बताया गया था कि 2026 बहुत जल्दी है और पोप के कार्यक्रमों की सूची पहले से ही भरी हुई है, लेकिन उन्होंने इसी साल यात्रा आयोजित करने की कोशिश पर जोर दिया। कार्डिनल ने कहा, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सब कुछ तैयार करने के लिए सिर्फ 4 महीने थे। मैं उस अधिकारी से बात करने गया जो पोप के कार्यक्रमों की सूची तैयार करता है, और एक हफ्ता का समय खाली मिला क्योंकि पेरू की एक यात्रा रद्द हो गई थी। इस तरह पोप लियो 14वें की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा आयोजित की गई। उन्होंने कहा,
तैयारी करने के लिए सिर्फ 4 महीने थे। इसमें पेरिस में खास जगहों को सुरक्षित करना, स्टैंड दी फ्रांस स्टेडियम में जागरण प्रार्थना का इंतजाम करना, लूर्द में सार्वजनिक एवं सुरक्षित क्षेत्र तैयार करना और मेड शहर में छोटे चौकों और गिरजाघरों को व्यवस्थित करना शामिल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्डिनल एवलिन ने यात्रा के प्रतीक चिन्ह के बारे भी बताया। इसका आदर्श वाक्य है, ताकि दुनिया को जीवन मिले। यह वाक्यांश संत योहान रचित सुसमाचार से प्रेरित है और कुछ लोगों ने इसे जुलाई में फ्रेंच पार्लियामेंट द्वारा मंजूर किए गए आत्महत्या में मदद बिल पर चल रही बहस से जुड़ा हुआ समझा। कार्डिनल एवलिन ने इसका किसी भी राजनीतिक अर्थ से इनकार किया है, लेकिन इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि यह आदर्श वाक्य मानव जीवन की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक संदेश है। कारितास इंटरनेशनल और कारितास इटालियन उन उदार संगठनों में से हैं जो नेपाल की मदद करने में सबसे आगे हैं। नेपाल 26 अगस्त को ग्लेशियर पिघलने से आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुनिया भर के कारितास संगठन अपने नेपाली बहन संगठन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो 26 अगस्त को आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाढ़ में करीब 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 5000 से अधिक लोग बेघर हो गए और घर एवं संरचनाएं तबाह हो गए। कारितास इंटरनेशनल कारितास जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो पहले से ही वहां मौजूद है, कारितास नेपाल और बाल एवं युवा सहयोगात्मक नेटवर्क के साथ काम कर रही है। खाना आपूर्ति, मनोवैज्ञानिक सहायता देना और मानव तस्करी रोकना उनकी प्राथमिकताएं हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।